वेलकम बैक टू उनको चिन्ह म्यूजिकल यू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकाडक दर्शा दिल तक रेडियो हम सपर सागर अच्छे आपन को सहित सो चलची मोदेसा फ्रेंड्स अमरो पर्व परमाणी केवल गुटे उत्सव नहि ए होची हृदय को हृदय सो जोड़ी बर गुटे अवसर से होली रो रंग हेउ कि दीपावली रो आलोक हेउ किंबा रजर खुशी हो कि ईदर भाईचारा हो एसबू मिसी करी गड़े आम भारतर सुंदर परिचय फ्रेंड्स आज पश्चिम संस्कृतिर प्रभाव मध्ये अनेक परंपरा को आम भूली जावाक जाइछंती किंतु मन रखंतु जे गछर मूल शक्तिशाली थाए से गछ सबुबेले उच्चक बढ़े से आम आधुनिक हेबा किंतु निज संस्कृति को सांगरे नहीं आगो को बढ़ेवा निहाती दरकार

0: अनेक अभिनंदन किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो एही टीका आम झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करी थाए एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करी देइछंती मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसिली
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि
0: ना ना किछि असुविधा हैनी तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो
1: ठीक अछि दीदी
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार

में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासहि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्ड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्ड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वं इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत विश्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

हेलो हे नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निश्चित रूप आपण मानू शुभ सकाल शुभ अभिनंदन आज सकाल आज दिन समस्त शुभ एवं बहुत बहुत मन रखा भली दिन मन रखा भली सका कारण प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त आम पाई खूब गुरुत्वपूर्ण आम जदि से मुहूर्त को ठीक बाटरे लगे बा, से समय को सदुपयोग करवा ठीक बाटरे ताहले से समय आम पाई हेब अमृतमय समय तबे शो स्टार्ट करिबा शुभ सकाळ ओफो कि खरा चारिआड़े झांजी पवन दिन बारटा बेल को रास्ता घाट पूरा सुन सान खा खा खरारे बाहर को बाहर को भारी डर लगुचे जोठी टिके गच्छ छाई देखी दौचे आम टिके अटकी जीवा को भारी मन हो सतरे ए खरा आम को केते डरे दौचे कहले ये जो झांजी पवन देहरे खाली टाइम टाइम मारी दौचे

म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो का एक दिल से दिल तक रे निशेचे आपने का सहित ए सुंदर सकाल रे सतरे बैशाख मास रे ए धू धू खरा सते जेमिते निया बृष्टि होउची तंटी पाटी सुखी की अठा हे जाउची मनरे प्रश्न आसे आ केते दिन जाय एमिते खरा अस्त व्यस्त आमको करिबो के जानी

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: म्यूजिकली और आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक चली सुबह सकाळ शो। वर्तमान समय रे स्कूल कॉलेज सब छुट्टी अछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखे सरकार छुट्टी घोषणा करिछन्ते। दिन 11टा रु 3टा मध्यरे टाण खरा रे बाहर को न बाहरबा को मध्य परामर्श दिया जायछि। तेणु आपण माने जो काम रे भी बाहर को बाहरु छन्ते खरा समय रे बाहर को बाहर को इच्छा प्रकाश करंतु नहीं। जदि निहाती दरकारी काम रे बाहरु छंती ताहले 11टा रु 3टा मध्यरे कोठी जोठी काम करबा को जाउ छंती से जगह रे रही जांतु, विश्राम नियंतु। 3टा परे ही बाहरी आसंतु निजर घर को, माने जोठु जाई छंती सेठी के आसंतु। कारण से समयटा खरा बहुत प्रखर थाए, टाण थाए। से समय रे आमे चेष्टा करबा कोठी छाई जगह देखी विश्राम करबा, तेबे जई आमे सुस्थ रहिबा, सुरक्षित रहिबा।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଶୋଭା ସକାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे

0: और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर

0: इसके लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
4: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
4: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
4: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडम

0: मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, and Norway and Italy.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। मु कहुतली जीवनर कथा, ए जीवन अमृतमय आनंदमय, मनुष्य जहाँ चाहे बेले बेले सहजरे से सब मिली जाए, आउ बेले बेले बहुत कष्ट करिबाकु पड़े, बहुत संघर्ष करिबाकु पड़े। तबे सहजरे पाइबा आउ संघर्ष परे पाइबा जिनिष भितरे फरक बहुत रहिछि, पार्थक्य बहुत रहिछि। देखंतु आपणकर एबे इच्छा हला गोटे भल जिनिष खाइबा पई, इमिडिएटली आपणकु मिलिगला। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ଯେତିକି ଖୁସି ମିଳିବ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଜିନିଷଟି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ଥାଏ ଅଲଗା ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଅପେକ୍ଷାର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟି ପାଇଗଲା ପରେ ତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मु कहतली आम जीवन कथा जीवन दुख आसीबो जंत्रणा आसीबो विभिन्न प्रकार समस्या आसीबो किंतु से समस्या भितरे बुड़ी न जाए से समस्या को सर्वश्रेष्ठ बोली विचार न करी समस्या केमिति समाधान बाहरी पारिबो से संपर्क रे चिंता करबा आम पई असाध्य बोली जिनिस किछि पे नाही एथिरे आमे समस्ते एकमत हेबा उचित कळे बळे कौशळे जेमिति भी हो निज लक्ष्य पथरे पहुंचिबाकु दृढ़ संकल्प रखिथिबा मनीषटे केबे बी निज जीवन रे को प्रकार रे भी हार मानि पारे नाही लक्ष्य साधन करिबा निमित्त अनेक प्रतिकूल परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा पई मध्य से अंटा भिड़ी थाए शेषरे से सफल हुए आनंद पाए।

0: ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛି। ସରକାର ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଦର 28%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 18% କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିପରି ମାର୍ବଲ ଏବଂ ଟ୍ରାବୋଟିନ୍ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର 12%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେବେକି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବ୍ଲକ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 12% ତୁଳନାରେ ଏବେ କେବଳ 5% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ବାଲି ଚୂନର ଇଟା ଓ ପଥର କାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଦର 12%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
4: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
3: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीलि।
4: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
3: ना, किछी असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
4: ठीक अछि दीदी।
5: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.youwin.mo

0: hfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।
1: कलाकार मु कला मो जीवन धन कला बिना मु बंची परिबिनि मुहूर्त बा प्रतिक्षण कला को जीवन करितिबा कला को नै जीवन जिउथिबा कलार कला रे कलंकित हेउ बा न हेउ किंतु कलार कला रंग रे इंद्रधनु रो प्रतिच्छवि देखुथिबा सब कलाकार आ कलाकार रो कलात्मक गुण को हृदय दे भल पाउथिबा सब कला प्रेमी को अभिवादन जणै आरंभ करछु आजर कलाकार कार्यक्रम। आज कार्यक्रम आपण सहित कलाकार कीर्ति आ कृति को नहीं चर्चा करने को मु पहुंचाई आप साथी बंधु जयदेव। ट्यून करथन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकर दिल से दिल तक अबे समय जाय जे सुनवा केतोटी हिंदी कथा चित्रर गीत सुनि दिछु आपन को गोटे गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
3: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
2: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय, एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
3: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
2: ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
3: ठीक अछि दीदी।
4: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.yuwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
5: कथारे कथारे अनेक कथा, गपरे गपरे आईमा पीढ़ी सुआसारी गप, आ गीतरे गीतरे आम हृदय आपण हृदय को छुई जाऊथिबा संगीतर स्वर, से स्वर रे आपण को मनरे भरी जीव अनेक आशा अनेक विश्वास, आ अपसरी जीव सब दुख अवसाद, भूली जीव सब मनर जंत्रणा हृदयर व्यथा, आ मजी जीव संगीतर मीठा बासना रे। आज संगीतमय परिवेश सहित आपणकर साथी बंधु जयदेव आर कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत ट्यून करते 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक।

कौन बंधु मोहित हेगले कि हजिगले कि सुनारी र सुनाधरा फूल पोछरा रे भिजिगले कि तार सुमधुर वासना रे हाँ बंधु सुनारी सुनारी तो एमिति मोहित करे पथचारी को तार अंग रे तार रूप रे तार वासना रे ए निदागरे मुहूर्त के दूरे दिए देहर क्लांति हृदय भ्रांति सतकि निदागरे दाउ दाउ जलुची सुनारी सुनाझरा सुनेली फूल रूपश्री सुनारी पसरा कमेली पथतारे खेले दोली गह गह रूप मह मह बास लावण्यरे खिली खिली हुई अनमना सुनली जौवना नीलंबु धारे बसीछि ओढ़णी खसाई चाहिए कणे किए से बाटई आसुची पथचारी आखि जाऊ अछि लाखी अपंगे रहे अनई लाजे जाए सरी सुनारी सुंदरी सरमरे जाए नई हरिद्रा बसन करि परिधान पिरति गीत गाउछि चैताली बा तन मन प्राण चहलाई तार देउछि पेंथा पेंथा हुई नाइचि कुसुम पेंथा पेंथा हुई झुलुचि नेंथा नेंथा हुई नाइचि कुसुम पेंथा पेंथा हुई झुलुचि बहिले समीर हेउछि अथिर काहा सते दोली खेलुचि नीलंबु सलीले पीत अवयव प्रतिबिंबता खेलुचि दिवारात्र ताप नाही ता प्रकोप सज सतेज लागुचि सदस्नाता बधु सरोवर तुठु फेरे पिंधि सिक्त बास अरुण आलोक करे तक तक लाजे नाली पड़े मुख स्वर्ग अपसरी मर्ते अवतरी हो सुवर्ण भूषित नीलंबुधार उपनीत गाए मिलन संगीत ठीक सेमिति देवकन्या बसु आचरी समस्या परिले श्रीकाम देव रतिदेव कपे पालटिले साप तरु रूपरे प्रकट सतरे से तरु रूपरे प्रकट होती जन देवकन्या जे अभिशप्ता देवकन्या पलटि जाइछंती एमिति वृक्ष रूपरे।

0: के साथ मैं कनक लता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकर दिल से दिल तक कार्यक्रम चलछ। आज चर्चा रे आज चर्चा आज विषय वस्तु छ छात्र छात्री केविते कटिबे समर हॉलिडे से संपर्क आपन मान कर मतामत को अपेक्षा करछ बंधु। तो बंधु सरी गलानी परीक्षा आउ किछि परीक्षा मते सरीबा सरीबा उपरे माने एकदम सरी गले कहि गडी गलानी कहले चले परीक्षा बली बड़ चिंता जीवा परे एबे पिला माने टिके रिलैक्स हे जे छथि आ आरंभ होइ जाय छि समर हॉलिडे। तबे एही हॉलिडे को पिला माने केमति कटिबे माने छात्र छात्री केमति कटिबे बुलाबुली करिवे ना आगामी वर्ष पय प्रस्तुत हेबे ना दुर्बल थवा विषय को सजाडीबा को चेष्टा करिवे केमिति आपण समर हॉलिडे को कटिबे केमिति आपण को पिला मानको समर हॉलिडे रे प्रस्तुत करिवे एही भली प्रश्न आज आपण को सम्मुख रहै छी। आज चर्चा रे छात्र छात्री केमिति कटिबे समर हॉलिडे कोन कहचेंते आपण जमा डेरी न करी फटाफट आपण को मनर कथा को शेयर कर दियंतु आम निकट को आम नंबर हला 09495963210 आ व्हाट्सएप नंबर है 8895254200 पठे दंतु आपन कर मैसेज आ ट्यून करथन 100.4 आकाश मणि एफएम रेनबो कट दिल से दिल तक।

0: my college time.
1: हाँ बंधु स्कूल कॉलेज रा टाइम होची गोटे अनन्य समय सांगसाथी मेले आम बीतपढ़ार बोझ भितर टी रिलैक्स मिले ये समर हॉलिडे कारण परीक्षा सरी जाए नुआ वर्ष आरंभ पाए नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ पूर्व आमको किसी समय मिले छुट्टी मिले खरा जो छुट्टी मिले तो यही समय को आम कमी बीतवा हसी खेली बुली ना बंधुघर को जा तो अनेक स्थान को बुलाक जा बीतवा ना खेली बुल कर बीत ना मोबाइल देखा ना केमी बीतवा कारण ये समय हूँ सबुठ बड़ मूल्यवान समय को थे हजेदे आउ के से फेरी आसेना गोटे सुंदर मेसेज टी आम पाखे पहुंची गुरुजी आसी गुरुजी देखते यही मुझ गुरुजी कह चीज ना तो पढ़वी सी निजे जन गुरुजी से पिला किभली गढ़ा दरकार पिला समर हॉलीडे को केमी काटा दरकार सुंदर भाव बुझे आम समस्त प्रिय श्रोता सुनीलकांत महांती देवकाली शंकरदास कटकू सुनील भाई सुंदर मेसेज जयदेव भाई आज सुंदर टॉपिक पदे आजिकल कॉम्पिटिटिव दुनिया रे समर हॉलीडे स्टूडेंट मानक भविष्य को शिक्षा क्षेत्र में मजबूत करने को एक सुवर्ण समय कहले अतिक्ति हेनी देखु मैट्रिक एग्जाम सरला अनेक पिला बुलाबूली कर समय बितांती किंतु किसी बुद्धिमान पिला समर कोर्स करी निज को पाठ पढ़ा व्रती कले ठीक ढंग से समय बीतुवा ठीक ढंग से समय बिताऊ पिला निश्चय जे आगामी दिन में उज्जवल भविष्य गढ़ी पार एथिरे संदेह नाई किंतु जो माने हस खुशी समय नष्ट कले से माने झिंटिका भली दुख को आदरी नवा को बाध्य हेबे तेणु भविष्य लक्ष्य रे व्रती हेबापाई प्राथमिकता देवा नित्यांत आवश्यकता कारण समय तो कभी फेरी चाहेना बयस को कही बांधी पारे ना खूब सुंदर कथाटी कहले सुनील भाई आहरी मत लिखिले आहरी किसी कही था छाड़गले सुनील भाई बढ़िया कथाटी आपन कही समय को जी हाथ छड़ा करदेव से केवे आउ फेरी आसवनी तो यही टी पूर्व आज खबरकगज गोटे देखुरी भद्रक अंचल गोटे अनुष्ठान अनुष्ठान तो कह जड़े समाजसेवी जी कि सबुबले बही की नहीं करी आंदोलन करते बही को नहीं पिलामानन को पाखरे पहुंचती से गोटे सुंदर अभियान टे आरंभ कर स्कूल को जाई पिलामानन को घर को जाई बुझाऊ अभिभावक मान को छुट्टी रे पिलामानन का हाथ में मोबाइल दियनी बही खंडिये दियो सी भी बही बांटुचन पिलामानन को नीति शिक्षा बही हो छोट गप बही हो गीत बही हो दियो से जेकोसी पाठ तो बाहर जातु पाठ न पढ़ु पाठ बाद अन्य अनेक बही अच्छी अनेक ज्ञान अच्छी अनेक नीति शिक्षा अच्छी जहाँ पाठर कोर्स मध्य ना से सबू पढ़ापी पिला समय ना पाठ पढ़ार बोझ भितर कोर्स रोझ भितर तो यही समय से हाथ में बही खंडे दिंतु मोबाइल ठार्क दूरे दिंतु पाने सुंदर भविष्य गठन करें यही नीति शिक्षा यही समर हॉलीडे जी ज्ञान पाइबे आगामी दिन आगामी भविष्य मजबूत कर बहुत मान बहुत दिन पर्यंत जीवन सारा से ज्ञानटी गोटे सुंदर ज्ञान हो रही बहुत साय कर हाँ बंधु छुट्टी को जमा नष्ट करूँ कारण समय तो कभी फेरी चाहेना बयस को कई बांधी पारे ना समय थरे हाथ चढ़ा हो गले आउ से समय को भाविले से केबे भी फेरे ना।

0: President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द सीबीआई जांच के आदेश हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी पंजीकरण विवरण उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में

0: पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोत्यान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी।

0: हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री

0: शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मु झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरि एक कैंसर जहा को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: बहुत स्मार्ट झियो तमको केते वर्ष
1: मते 14 वर्ष
0: एबे आपण को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो
2: कोन कैंसर पई बे टीका अछि
0: हां एहा एपरि एक कैंसर जहा को एचपीवी वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई पारिबो
2: धन्यवाद दीदी
0: निश्चय निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार
4: हंड्रेड पॉइंट फोर आकाशवाणी एफ एम रेनबोक दिल से दिल तक चली कार्यक्रम मो देश आम चर्चा करछ आज भारतीय सेनार नर्सिंग सेवा संपर्क भारतीय सेनार जो नर्सिंग सेवा जहाँ क्या मिलिटरी नर्सिंग सर्विस यही सेवे जोगदेवाई एक योग्यता मानदंड रही शिक्षक सहित सामाजिक मानदंड भी रही शिक्षागत भाव प्रार्थी को विज्ञान विभाग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी द्वादश श्रेणी बा 10+2 पास करने पड़े विभिन्न नर्सिंग कोर्स जपरिक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किंबा एमएससी नर्सिंग डिग्री हासिल करिया को पड़िबो एहा सहित स्टेट नर्सिंग काउंसिल रे नर्स बा मिडवाइफ भाबे पंजीकृत होइतो दरकार प्रार्थी अविवाहिता छाड़पत्र प्राप्त आईनित विच्छिन्न किंबा विधवा होइतो आवश्यक वयस साधारणतः 21-35 वर्ष मध्ये होइताए नियुक्ति पई कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आउ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होबा परे कैबिनेट इंटरव्यू ओ परे शारीरिक आउ डाक्तरी योग्यतार मानदंड पूरण करबाकु पड़िथाए अन्य चाकरी भली एहार मध्य सेई भली समस्त प्रकार मानदंड को पूरण करबाकु पड़िथाए नर्सिंग सेवार अधिकारी होबा पई

सुनसुनी 100.4 आकाश में एफएम रणपोकड़ दिल से दिल तक कार्यक्रम चलुची। भारतीय सेना रो नर्सिंग सेवा अधिकारी को संपर्क में हमें कथा होचे। भारतीय सामरिक नर्सिंग सेवा होची भारतीय सेना रो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवार गोटे अंश, जहां मूलत 1888 मसीह रे ब्रिटिश शासन अधीन रे गठित होइतला। एमएनएस कॉर्प्स रे अधिकारी मानकु प्रारंभ रे शॉर्ट सर्विस कमिशन प्रदान करा जाय, परे चयन एवं खाली पदवी उपर आधार करी स्थायी कमिशन पे बछा जाय थाय। सेमानकु भारतीय सेना रो अधिकारी भाव रे नियुक्ति दिया जाय। सेमानकर पदोन्नति कमिशनिंग एवं पदोन्नति आनुष्ठानिक भाव रे स्वीकृति प्राप्त आ भारत सरकार को साप्ताहिक गेजेट विज्ञप्ति रे भी प्रकाशित हुए। सरकारी डॉक्यूमेंट रे सामरिक नर्सिंग सेवा मधे कमिशनिंग एवं पदोन्नति समय अधिकारी मानक नाम भी तालिकाभुक्त करा जाय थाए। भारतीय सेनार नर्सिंग सेवा ब्रिटिश अमलरू 1888 मसीह आरंभ होईची। प्रारंभ रे यार नाम थिला आर्मी नर्सिंग सेवा, तबे समय आ आवश्यकता भित्ति करी वर्ष वर्ष धरि ए सेवा रे परिवर्तन करा जायची। 1893 मसीह हाकु भारतीय सेना नर्सिंग सेवा भावरे नामित करा जायतला। 1902 मसीह रे भारतीय नर्सिंग सेवा आउ सेना नर्सिंग सेवा को मिश्रण करा जाय परे एई बाहिनी रे आउरी परिवर्तन आसला। 27 मार्च 1902 रे एहाकु राणी अलेक्जेंड्रा का नाम रे राणी अलेक्जेंड्रा इंपेरियल मिलिटरी नर्सिंग सेवा भावरे पुनर्निर्माण करा जायतला। 1914 मसीह रे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होला समय रे राणी अलेक्जेंड्रा इंपेरियल मिलिटरी नर्सिंग सेवार 300 जन रु कम मध्य नर्स थिले, तबे युद्ध शेष होवा परे ए संख्या को बढ़ाई दिया गला, कारण युद्ध रे आवश्यक पड़ला नर्सिंग सेवार आवश्यक पड़िबारु युद्ध परे परे अधिक नियुक्त करा गला। पाखापाखि 10,000 कर्मचारी सेना अधिकारी माने नर्सिंग सेवा रे शामिल हेले। सेना नर्स माने फ्लैंडर्स, भूमध्य सागर, बाल्कन, मध्य प्राच्य, विदेशी हॉस्पिटल, जहाज मानकर मध्य सेवा कर 27 मार्च 1902 रे एहाकु राणी अलेक्जेंड्रा का नाम रे राणी अलेक्जेंड्रा इंपेरियल मिलिटरी नर्सिंग सेवा भावरे पुनर्निर्माण करा जायतला। 1914 मसीह रे प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ होला समय रे राणी अलेक्जेंड्रा इंपेरियल मिलिटरी नर्सिंग सेवार 300 जन रु कम मध्य नर्स थिले, तबे युद्ध शेष होवा परे ए संख्या को बढ़ाई दिया गला, कारण युद्ध रे आवश्यक पड़ला नर्सिंग सेवार आवश्यक पड़िबारु युद्ध परे परे अधिक नियुक्त करा गला। पाखापाखि 10,000 कर्मचारी सेना अधिकारी माने नर्सिंग सेवा रे शामिल हेले। सेना नर्स माने फ्लैंडर्स, भूमध्य सागर, बाल्कन, मध्य प्राच्य, विदेशी हॉस्पिटल, जहाज मानक सेवा करिवार सुजोग पाइले, सेमानको सेठिके पठा कला। पाखापाखि एई युद्ध रे प्रथम विश्वयुद्ध समय रे 200 रु अधिक नर्सिंग अधिकारी शहीद मध्य होइतिले। युद्ध परे 1926 मसीह अक्टोबर 1 तारिख रे नर्सिंग सेवा को ब्रिटिश भारतीय सेना रो स्थायी अंश करा जायतला। तेणु एहि तारीख को भारतीय मिलिटरी नर्सिंग सेवा दिवस जोटी स्थायी अंश भाव निजुक्ति दिगला सेनारे, तेणु 1 अक्टोबर को से दिवस भाव पालन करा जायछि।

ట్యూన్ కొని చంది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్ దిల్ సే దిల్ దాగ్. स्टूडियो घर से समय 4 बजी 12 मिनट 30 सेकेंड आई सुंदर सुंदर कह भी ना जो मुझे कह भी मस्त मंगलवार आफ्टरनून तर बेटर हो ना ताले मस्त मंगलवार आफ्टरनून रे सुदीपा हाजर अपनों के पाखे रे सुरीला आफ्टरनून रे निश्चित भाव रे ए जो गोटे दिन तले रबार चाहिए समस्त बढ़िया छुट्टी काटीचु केते मजा मस्ती करीचु बुलाबुली करीचु तापरे सोमवार मंगलवार ठो पाखा पाखी गुरुवार पर्यंत ने टेके टेंशन लागे बहुत काम जेमते शुक्रवार हे आसो आमको लागे फो शुक्रवार हे आसलानी दि दिन परे संडे माइंड टेके रिलैक्स हो जाए सेतिमै ए जो सोमवार गुरुवार ना भारी टफ दिन माने भारी कष्ट लागे बहुत काम थाए स्कूल पिला को भी ए दिन भारी कष्ट लागे शनिवार तो प्राय हाफ छुट्टी हुए से एमती लगे शुक्रवार न आज केमती गोटे 4 बजे छुट्टी गले काली हाफ छुट्टी पर्न संडे ना से जो भारी टेंशन भरा माहौल टेंशन भरा पाग खरा हो मानुची गरम टिके बेसी ना कि गरम तो होउची नै तेनु एई गरम गरम पागरे ठंडा ठंडा पानी पियंतु पड़ पानी पियंतु लस्सी पियंतु आखु रस पियंतु निजर ध्यान नौ थांतु आउ एंजॉय करथांतु किछे लवली ट्रैक्स ग्रहण करथांतु सुदीप पात्र प्रगटे प्यार भरा नमस्कार.

ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସୁଇଲ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସୁଦୀପା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। तबे रूसर अवस्थित टोरियुक सहर होउची विश्वर से स्थान भितर गोटे स्थान जेउठी सूर्यंक दर्शन पाइबा बहुत कष्टकर। एठी जदि वर्षक हिसाब कराय जाय ताले पूरा वर्ष भितर हाराहारी 845 घंटा जाय सूर्य किरण मिलिथाय। तबे वर्षर अधिकांश समय एठी अंधकारमय वातावरण छाई रहिथाय। विशेषकर शीत दिन ए सहरर सूर्य प्राय देखा जांति नै। लगातार बरफपात जोगु जनजीवन बहुत प्रभावित मध्य हेथाय। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରିକ୍ୟାଭିକ୍ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଉପସ୍ଥିତି ବହୁତ କମ୍।

ट्यून करिसेंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुरिल आफ्टरनून रे सुदीप आछे आपनका पाखरे आटलांटिक महासागर भितर अवस्थित फारो द्वीपपुंजर राजधानी टोर्स हावन यार अद्भुत एवं रहस्यमय पानीपाग सारा विश्व परिचित एही शहर को पृथ्वीर सबुठारु कम सूर्यकिरण पाउथिबा स्थान भाव गणना करा जाए कारण एठारे वर्षक हाराहारी मात्र 840 घंटा पाई सूर्य देखा जाती वर्षर अधिकांश समय यह जगार घन कुहुड़ी और मेघाच्छन्न आकाशर चादर तले ढांकी रही है जो एठाकर वातावरण सबुबले शीतुआ मेघुआ किंतु सूर्यकिरण अभाव सत्वे भी एठिकार प्राकृतिक सौंदर्य और शांत परिवेश पर्यटक मानू किंतु बेस आकर्षित कर ता सहित यूरोप्र बहुत सहर में सूर्यकिरण अभाव देखा बेले जर्मनी कोलोन सहर एक क्षेत्र अन्यतम एठार वर्षर अधिकांश समय आकाश मेघाच्छन्न रही है जो खरा बहुत कम समय देखा मिलता है प्रायत धूसर आकाश और मेघुआ वातावरण परिचय एशिया महादेश एक विशेष स्थान भाव परिचित ताइवान कानवान सहर यार अद्भुत पानीपाग विशेष जनाशुना यह सहर टी अत्यधिक मेघाच्छन्न रहुथिबारु स्थानगुड़िक मध्यरु जेउठारे वर्षक प्राय 950 घंटा पई ही खरा देखा मिलता है एठारे वर्षर अधिकांश समय आकाश मेघमाळारे घोड़े ही रही है वर्षा सांगे मेघुआ पागर प्रभाव अधिक देखा मिलता है तेज सूर्य उज्जवल किरण अपेक्षा एठिका लोक मैंने किन्तु वर्षा और थंडा परिवेश रहा अभ्यस्त हो जाइछन्ति।

0: बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घर समय संध्या 6:55 सुनिबा आज कार्यक्रम संपर्क सूचना गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानस शुणीपारे संध्या 6:10 भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणीपारे संध्या 6:30 संध्या असर शुणीपारे 7:25 राति 8:02 शुणे कार्यक्रम गीतरे मितरे ओडिया एवं हिंदी गीत सम्मिलित कार्यक्रम अभला स्मृति शुणीपारे राति 9:15 राति 10:00 शुणीपारे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस वर्तमान शुणा आसंता कालीर कार्यक्रम संपर्क सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी शुणीपारे सकाळ 6:05 अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 34वां भाग शुणीपारे सकाळ 6:40 आमर स्वास्थ्य सकाळ 7:10 विषय रही अनिद्रा जनित स्वास्थ्य समस्या आलोचना करिबे डाक्टर शारदा प्रसन्न स्वाई शुभ सकाळ शुणीपारे सकाळ 7:25 सकाळ 8:30 शुणीबे कार्यक्रम मो पसंद डायलिन लाइव चिटचाट शुणे सकाळ 9:00 एवं संध्या 5:02।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

0: सूचनानाम् आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम् द्वितीयवारम् असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বৰহ অপি মন্ত্ৰীমণ্ডলহ মন্ত্ৰিত্বেন শপথম স্বীকৃতৱন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতঃ রামেশ্বর তেলী, अजंता नेयोग च असम गण परिषद पक्षत अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षत चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत्, यः अनवरतम् द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मन्त्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेशमन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणां आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पास ले जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहा है, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेंस नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसस्य विषयः अस्माकं परिचारिकाः अस्माकं भविष्यम् इति। सशक्ताः परिचारिकाः जीवनानि रक्षन्ति इति उपविषयः अपि निर्धारितः अस्ति। एतत् वैश्विकस्तरे परिचर्या व्यवसायिकानां कृते उत्तम सहयोगस्य संरक्षणस्य संसाधनानां च आवश्यकतां प्रकाशयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन निर्वाचित मुख्यमंत्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः नेतृत्वे प्रथम मंत्रिमंडल गोष्ठ्याः निर्णयानां भूरि प्रशंसां कृतवान्। सामाजिक माध्यमेन प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पश्चिम बंगाल राज्यस्य जनानां कल्याणमेव सर्वोपरि प्राथमिकता वर्तते। श्रीमोदी हर्षं प्रकटितवान् यत् अधुना राज्यस्य नागरिकाः विश्वस्य बृहत्तम स्वास्थ्य योजनायाः आयुष्मान भारत इत्यस्य लाभं प्राप्तुं शक्ष्यन्ति, या उच्चस्तरीय सुलभ चिकित्सा संविध्य

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश

0: सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज केवल खबर पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
2: नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या सतटार न्यूज हेडलाइंस को आपण मानको पुनी थरे स्वागत करुछि मु महेश्वर साहू। आज क्रमगत द्वितीय दिन पई महाप्रभुंक भीतर रत्न भंडार रे थिबा रत्न अलंकार गणति मणति करा जायछि। आज श्रीमंदिर रे मध्यान धूप सरीबा परे रत्न भंडार गणति पई संप्रुक्त प्राधिकृत टीम श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश करथले। गतकाली ठारु पुनः आरंभ होइथिबा रत्न अलंकार गणति मणति चलित मास रे 9 दिन पई चलिबो। मालकानगिरी जिल्लारे आजिठारु पुणि आरंभ होइछि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। कटक एससीबी मेडिकल कलेजर सात जणिया विशेषज्ञ डाक्तरी दल एक स्वतंत्र विमान जोगे मालकानगिरी रे पहुंचिथिले। आसंता 15 तारीख पर्यंत एही सेवा जारी रहिबो। आज प्रथम दिन रे 3,199 टी विभिन्न परीक्षा करा जाई 399 जण रोगीक चिकित्सा करा जाई छि। प्रश्नपत्र प्रगट अभियोग आसिबा परे गत 3 तारीख रे अनुष्ठित होइथिबा स्नातक डाक्तरी शिक्षा प्रवेशिका परीक्षा नीट यूजी 2026 को बातिल करा जाई छि। प्रश्नपत्र प्रगट अभियोग रे सविशेष तदंत करबा पई केन्द्र सरकार सीबीआई को दायित्व हस्तांतर करछन्ति। आसंता 7-10 दिन मध्यरे संपूर्ण त्रुटि शून्य और स्वच्छतार सह सानी परीक्षा करा जिवो बोली एनटीए महानिर्देशक कहिछन्ति। नर्समानक सेवा और समर्पण भाव को सम्मान जणाई आज पालन करा जाउछि अंतर्जातीय सेविका दिवस। एही अवसर रे राष्ट्रपति भवन रे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 जण समर्पित सेविका को राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान करछन्ति। संध्या 7:30 आज आईपीएल क्रिकेट रे एक मैच गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद मध्य अनुष्ठित हेबो। जातीय शिक्षा

0: बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
1: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निज झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
2: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरि एक कैंसर जहा को एचपीवी वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
2: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: कविता भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मु झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।

ट्यून करी छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक संध्या स्तर रे सुदीप आछ आपनको पाखरे जणई परिवा आपनकर नियर एंड डिवांस को ए सुंदर संध्या रे निजर गुड विशेस यस मोबाइल फोन रो मेसेज बॉक्स कि जेबे कैपिटल लेटर लेखिबे एफएमआरसी स्पेस देबे ना एड्रेस सहित जहां को पई आजिर दिन रो स्पेशल विश अछि ताको लेखि देबे एवं जहां विश अछि लेखि पठे देबे 09495963210 नंबर रे किंबा व्हाट्सएप करि परिबे 8895254200 नंबर रे

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक संध्या सर रे परवर्ती विश करी शंदी लिखाई गुड इवनिंग सुदीपा अपा नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार आपण को उपस्थापना बहुत भल लगुच।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून करी छेंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदार स्त्री घर समय राति 8:08 सुधी पाछे आपनको पाखरे गीतरे मित्रे गीत डेफिनेटली सुनिबा बहुत गुडी गीत सुनिबा एवं सुपर डुपर हिट गीत सुनिबा कुमार शानू को गीत सुनिबा जो सब गीत तांकर पाइछि फिल्म फेयर अवार्ड यस डेफिनेटली सही सब स्पेशल गीत आज सुनिबा जो गीत पाई से पाइछंती फिल्म फेयर अवार्ड बहुत गुडा अवार्ड तो पाइछंती किंतु

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल दाग फिल्म आशिक रो गोटे गीत कुमार सानू पाई प्रथम थर पर फिल्म फेयर अवार्ड यस तबे फिल्म टी रिलीज होता 1990 मसीहा 23 जुलाई रे फिल्म को डायरेक्ट करते महेश भट्ट फिल्म को लेखी थे रॉबिन भट्ट एवं आकाश खुराना फिल्म रे

गणेश वंदी 100.4 आकाशवाणी एफ एम रेनबो का टेक दिल से दिल तक। परवर्ती फिल्म होची साजन जार गोटे गीत पाई कुमार शानू फिल्म फेयर अवार्ड 1991 मसीहा 30 अगस्त फिल्म टी रिलीज होता लव ट्रायंगल को नहीं कि इस सुंदर फिल्म टी जमी आशिकी सब गीत एपर्यंत सुपरहिट से पर्यंत साजन रीत भी एपर्यंत एवरग्रीन होगी। तेज फिल्म टी डायरेक्ट करते लॉरेंस डिसोजा फिल्म आम देखी सलमान खान को संजय दत्त को माधुरी दीक्षित सहित आहरी बहुत एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को तबे सुनिबा से ब्यूटीफुल गीत स्टे ट्यून्ड।

0: कविता भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपण को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: कविता भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपण को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निकम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साई राजवंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार

को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक

0: समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एवियन सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एम आर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेता पर्णा पांडा को हार

सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अजब जमाना बाबू भूले तू जाना, अजब जमाना बाबू भूले तू जाना।
1: मम्मा
2: ओ लाला,
1: मम्मा
2: ओ राजा,
1: ओ बाबू
2: ओ लाला,
1: ओ बाबू
2: ओ राजा।
3: ट्यून करिछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। अभुला स्मृति रे सुनछंती किछि अभुला एवरग्रीन सॉन्ग्स। आन मिलो सजना फिल्म रो सुंदर गीतटी आसुछि लता मंगेशकर किशोर कुमार को वॉइस रे। गीतटी को लिखिछंती आनंद बख्शी, म्यूजिक रे सजिछंती लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
4: तो हम चलते हैं।

0: केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक परवर्ती मेसेज करी शंदी सुनील कांत महांती सिल्लू आकृति देवकाली संखतरास कटक रु नमस्कार जणी छंती आपनंकु मध्य नमस्कार परवर्ती मेसेज करी शंदी कन्याकुमारी बेहरा रीताराणी बेहरा संयुक्ता बेहरा भास्कर बेहरा आर्यन बेहरा शबनम खान जस्मिन खान केन्दुपाटना सालेपुर गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ जनई छथि आपनको मध्य वेरी गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ

ट्यून करी शुन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक परवर्ती मेसेज करी शुन्दी मोनी रानी सोना चंदन संजू संतोष निर्मला मामाली कंतोल आठगडरु जय श्री राधे जणी शुन्दी जय जय श्री राधे परवर्ती मेसेज करी शुन्दी

ट्यून करी शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करी शांति लक्ष्मी सरस्वती शिवानी चिदानंद माण्याबंध बड़म्बारु जय जगन्नाथ जनैछन्ति आपनकु मध्ये जय जगन्नाथ परवर्ती मेसेज करिछन्ति दुर्गा प्रसाद दळाई पारेश्वर साही जोब्रा कॉलेज स्क्वायर कटक रो गुड इवनिंग जय जगन्नाथ जनैछन्ति आपनकु मध्ये गुड इवनिंग जय जगन्नाथ सुकांत माझी मेसेज करिछन्ति मयूरभंज रु देवेन्द्र तांती राकेश तांती प्रकाश तांती मेसेज करिछन्ति सुपाई गांव रु परवर्ती मेसेज करिछन्ति राजेन्द्र नना नुआगारु मेसेज करिछन्ती देन मेसेज करिछन्ती जमशेदपुर झारखंड रु निशा कुमारी रेशमा कुमारी देवेन परवर्ती मेसेज करिछन्ती प्रेमानंद महापात्र बांकी कटक रु देन मेसेज करिछन्ती हालु भाई आठगड़ मेसेज करिछन्ती जय जगन्नाथ जनैछन्ती आपनकु मध्ये जय जगन्नाथ देन मेसेज करिछन्ते आभास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रु मेसेज करिछन्ते हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेन्द्रमणि वर्मा नखेलाल वर्मा मेसेज करिछन्ते छत्तीसगढ़ रु देन मेसेज करिछन्ते इंद्रमणि बेहरा कटक रु मेसेज करिछन्ते सुनिदेवा समानक मनपसंद गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे

0: मजबूत किया जाएगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
3: स्वास्थ्य क्षेत्रे नूतन उद्भावन एवं सेवा जोगाइबारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछि कहिले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जातीय शिक्षानीति 2020 रे मातृभाषा भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नवसृजनकु सरकार प्रोत्साहन देउछन्ते कहिले केन्द्र शिक्षामंत्री। नीट यूजी सानी परीक्षार तारीख आगामी 10 दिन मध्ये।

सुनिश्चिंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आपण माने सुनिश्चिंदी आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली।

FM Rainbow Katak 100.4 Dil Se Dil Tak Karyakrama Chalichi Bhakti Sangeetara Arkhya Thali Apananka Sathi Smruti Ko Sunichanti Aajira Ei Sakalare Kohajai Ei Nauka Bihara Manushya Jibanara Pratika Jibana Madhya Samudra Bhali Kebe Santa Kebe Chhada किंतु जदि जीवनर नौका रे जगन्नाथ अछंती तेबे भय कहाको डर कहाको भौरी यात्रा हमकु सिखाए भक्ति हेउची जीवनर सबुठु बड़ शक्ति

सुन छे आकाश पानी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाल शुणी आपथी स्मृति को कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य था बंधु जगन्नाथ को बुझा सहज नुह से केवल काठर विग्रह नुहति से हेउछन्ति भाव से अनुभव से एमती एक शक्ति जहाँ हृदय अनुभव करा जाए केही तांको कालिया सांत कहंती तो केही डाकंती प्रभु आउ केही पुनी निज पुओ भली भल पांती हौ सेथिपई तो जगन्नाथ संस्कृति रे भक्ति सह मिसिची अपार आत्मीयता ज्येष्ठ मास गरमर ताप आउ सेही समय रे प्रभुंको शीतलता दबा पई अनुष्ठित हेथाय चंदन यात्रा आउ ए चंदन यात्रार अत्यंत सुंदर अंश हेउची भौंरी यात्रा पुरीर पवित्र नरेन्द्र पुष्करणी रे श्रीमंदिर चलती प्रतिमा माने सुसज्जित नौकारे विहार करती दुईटी नौका पानी मझीरे गोल गोल भाव घूरु थाए आउ ए घूरिबा को कुहा जाए भौंरी तबे श्रीक्षेत्रर ए भौंरी समय रे आउ एक कथा मध्य अनुष्ठित हेथाए ए श्रीक्षेत्र भौंरी महाप्रभुंकर बाहर चंदन यात्रार शेष दिन विधि अनुजाई भौंरी रे चका डेरा नीति संपन्न हेथाए तीन रथर चक अख संजोग कराए तीन बाड़र पूजा पंडा सामंत सकाळ धूप सरिबा परे तीनोटी आज्ञामाळ आणी तीन रथर चक अख निकटरे लागी करिबा परे विश्वकर्मा माने अनुकूल करंती प्रथमे ताळध्वज रथ परे नंदीघोष रथ एवं शेषरे दर्पदळन रथ पई चका डेरा संपन्न हेथाए एपटे रथ खळारे 40 रो अधिक रथ चक्र निर्माण शेष हो जाए से समय आउ एहा परे तुंभ सहित अर जोड़ीबा एवं पही लागिबा काम जोरसर रे आगकु बढ़िथाय

0: आकाशवाणी कटक आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुणु खाद्य ही औषध आलोचना कर डाक्टर रवींद्रनाथ प्रधान
1: खाद्य और पानी बचा एकांत अपरिहार्य खाद्य द्वारा शरीर धातु मान पोषण शरीर वृद्धि विभिन्न रोग प्रतिषेधक शक्ति वृद्धि जो विभिन्न प्रकार रोग शरीर रक्षा पाई यह खाद्य शरीर पक्षे उपकारी और अपकारी होता संतुलित आहार औषध तुल्य कार्य आवश्यकीय परिमाण रे मुग कोलथ हरड़ डाली शाग सबुज पनीपरिया कंद नाड़ और डंक तटका फल कम चर्बीजुक्त क्षीर घोल दही अंडार धला अंश माछ कुकुड़ा मांस सोरिष तेल सूर्यमुखी तेल नड़िया तेल चीनी और गुड़ तटका फल रस चा आवश्यक अनुजाई खाइले शरीर पुष्टि होता है प्रत्येह विभिन्न प्रकार शाग जथा बथुआ पालंग कोशिला मेथी धनिया पत्र सोरिष पत्र सजना शाग विभिन्न प्रकार भजा और तरकारी करी खाइबा उचित परिवा भितरे कलरा जन्ही भेंडी कखारू फूल और बंधाकोबी लाऊ ओऊ बीन टमाटो गाजर बीट आलू पणस मंजी अमृतभंडा सजना छुई कदळी कदळी भंडा प्रभृति तरकारी रूपे खाइबा उचित विभिन्न ऋतु अनुसारे अंला सेओ कमला कदळी काजू अंगूर पिजुळी पणस आंब जामु खजिरकोळी आत नेहुआ लेंबू पाचिला अमृतभंडा सपुरी सपेटा स्ट्रॉबेरी और लिचु प्रभृति खाद्य शरीर को पुष्टि करने संगे संगे शरीर आवश्यक करुवा विभिन्न श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार खाद्य जोगाई थाए खाद्यर सामंजस्यता सुषमता एकांत आवश्यक खाद्यर सात्मता औषध भाव कार्य करे मात्र विरुद्ध भोजन शरीर को रोगग्रस्त कराए विभिन्न रोग से खाद्यर नियमता उपरे गुरुत्व देवाक होइथाय ऊर्ध रक्तचाप ब्रुकक जकृत जनित रोग से लुण वर्जित खाद्य खाइबा आवश्यक बेसी तेल घी लुणिया लवणयुक्त लहुणी मांस माछ और सुखुआ पांपड़ तैलयुक्त आचार खाइबा अनुचित विभिन्न असात्म खाद्य खाई आमे किपरी रोगग्रस्त हेउ ताहा वर्तमान विचार्य विषय नान रुटी केक नूडल्स खाइबा द्वारा अग्निमांद्य अरुचि प्रभृति रोग होइथाय अत्यधिक तेल भजा परिबा कदळी चिप्स आगरु सिझा जाइथिबा परिबा कु बेसी दिन फ्रिज रे रखी खाइबा सुखिला फल सिराप भाबे करा जाइथिबा फल रस छेना लहुणी खुआ गुंड दूध क्षीरसर अंडार हलदिया अंश चिंगुड़ी विभिन्न प्रकार मांस अत्यधिक तेल वनस्पति घी चॉकलेट आइसक्रीम मद्य तेल रखा जाइथिबा आचार और लुणी बिस्कुट प्रभृति खाइबा द्वारा शरीर में मेद वृद्धि हेबा संगे संगे मेद जनित रोग सृष्टि हुए एणु सात्म आहार शरीर पक्षे उपयोगी यह शरीर इंद्रिय और मन को प्रसन्न रखे यह शरीर पक्षे औषध तुल्य कार्य।

0: दीदी आज मो झी को 14 वर्ष पूरी तो तारी उपहार नाक आसी
1: अनेक अभिनंदन किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य दे दियो एही टीका आम झी मान सर्वाइकल कैंसर रक्षा करी थाए एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झी मानक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करी दे छंती मो झी को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली
0: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि
1: ना ना किछ असुविधा है नी तुमे मध्य आज ही निज झी को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल UWIN रे पंजीकरण करिनियो
0: ठीक अछि दीदी
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार
3: म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी FM रेनबो कटक को आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों और सुबह की 7 तेवे चलंतु इस सुंदर गीत और आरंभ करिवा आज सुंदर सकाळ को यस yes.

सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली सुबह सकाळ समय वर्तमान सकाळ 7:54 एंड 40 सेकंड सुन चंदी आपनका साथ ही स्मृति को आज रा सकाळ रे तबे ए जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे रे गोटे प्रॉमिस करबा टेक्नोलॉजी को स्मार्ट भाबरे यूज करबा फेक न्यूज स्प्रेड करबा को नुह डिजिटल वर्ल्ड को पॉजिटिव करबा को सो टेक्नोलॉजी द्वारा आम समस्त हेल्प कर टेक्नोलॉजी सद्व्यवहार करातीय प्रजुक्ति विद्या दिवस एक कथा ही समस्ते मानवा उचित तेज आपुले आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समय वर्तमान सरी सरी आसला तेज चलो आम सहित कनेक्टेड रही था अपडेट रही था एंड सब बड़े स्माइल करे ब्यूटिफुल गीत आसक इंजय करम सहित कनेक्टेड रही था एंड कहू था दिल से दिल तक।

सुविच इंडिया का स्पानी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सुविच चली ची मॉर्निंग मेलोडी अपन मने सुविच इंडिया जरे सकल रे अपन का साथ ही स्मृति को सो ये तो थिला हृदघात जनित जंत्रणार सिम्टम्स यदि गैस पई जंत्रणा होची ताले गैस किंबा एसिडिटी जोगु जो जंत्रणा होई थाए सेटा पेटरु आरंभ होई छाती पर्यंत जाई थाए आउ ए जंत्रणा सहित आपणकर छाती जळापडा होई थाए एवं खाइबा परे ए जिनिसटी अधिक तीव्र होई थाए पेटरे गैस जमा हबा आरंभ हुए छाती रे जळापडा अनुभव हुए पाटीरे खटा स्वाद अनुभव हुए जो ढका रसे कहुए तो सेमती खटा ढका रसे थाए हैकुटी मारिबा परे किंबा औषध खाइबा परे जंत्रणा कमिबा आरंभ होइथाय जदि आपणक छातीरे जंत्रणा अनुभव होउछि तेबे तुरंत से गैस हो एसिडिटी हो बा हृदघात जनित हो जदि आपण जानि पारु नहांति केबे बि अनदेखा करंतुनी बा गैस एसिडिटी भाबी कि साधारण औषध किंबा घरोई जो उपचार रहिछि ताकु न आपणि आपण टिके डाक्टरक सहित परामर्श करिनियंतु जोटा कि आपणक स्वास्थ्य पई बा परवर्ती समय पई बहुत फायदेमंद हबो उपकारयुक्त हबो बिल्कुल कारण हृदय जदि ठीक रहिबो ताहले त धड़किबो ना धक धक हबो कहा पई।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: म्यूजिकल योर आकाशवाणी एफएम रेनबो। हेलो
2: मैं भी जाऊ जबरा।
1: अच्छा कौन जाऊ चंदी
2: दिल्ली मु कोन दिल्ली मु खोरदार रहूची खोरदार भुवनेश्वर दिल्ली मु ए टाइम रे।
1: अच्छा ए समय रे आपण जीवासवा करंती
2: कार्यक्रम सुनी करी।
1: हां हां
2: सुन सुन करी मु जाए।
1: अच्छा
2: ट्राई करे लगेबा को आज लागला फर्स्ट कलर बदे मु
1: फर्स्ट कलर आपण आमर आज फर्स्ट कलर होचंती आपण एंड आपण गला बळे जाउ सुनु छंती सेटा बहुत बड़ कथा जा हो। थैंक यू सो मच आज कॉल करथिवे। तबे आज होची आमर नेशनल टेक्नोलॉजी डे आमे भी आज पचारुचु आपण को जे आपण फेवरेट

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा है नी। तुम्हें मध्य आज ही निज

एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, उम्र भर याद आती है पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। कौन किसी बुझी पारे? तेणु वर्तमान को एंजॉय करंतु, वर्तमान समय रे बंचंतु, जहां भी मन भीतर इच्छा अछि से सब इच्छा को पॉजिटिवली पूर्ण करंतु। एंड यदि मन भीतर कहा को किसी कहिबार अछि ताले ताकु साहस बांधी कही दियंतु, कारण एमिति न हो जे ई समय ई वयस सब किछि आग को बढ़ी चली थिवो। एंड आपण भावुथिबे कास से समय रे मु एमिति करि थांति कि, कास मु से समय रे सेमति करि थांति कि, वो उम्र ही कुछ अलग था, वो उम्र ही कुछ था जहां पे हम लोग ये सब करते थे, तो ये था तो ये मत कीजिए, अभी कीजिए। सुनी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को स्मृति को सुनी छंदी आज रही सुंदर सकाल रे। एंड 10:00 ऑलरेडी हेगलानी, आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर्स पढ़ीवार समय हेगलानी, अनुरोध रो गीत प्ले करिवार समय हेगलानी, बिकॉज आरंभ हेगलानी सो रेनबो एसएमएस। सो चलंतु आरंभ करिबा प्रथम मेसेज के करि छंदी हमकु प्रेम जी, कम्युनिकेशन सीडीए सेक्टर 7 मरकत नगर कटक रु। हम सहित प्रेम जी भाई हम सहित कनेक्ट हेइ छंदी, सुनिया पई चाहि छंदी 1992 बेटा फिल्म रो कोयल सी तेरी बोली गीत टिकु, एंड डेडिकेट करि छंदी सब श्रोता मानंकु एंड समस्तंकु गुड मॉर्निंग जणै छंदी। तबे पहुंचो छी आपनक पाखकु बेटा फिल्म रो ब्यूटीफुल ट्रैक टी।

ओके सो चलंतो नेक्स्ट एसएमएस परिवा के करिछंती नेक्स्ट अनुरोध रगीत के करिछंती हमको हम सहित कनेक्ट हे चंती बासंती लक्ष्मी प्रिया रोजालिन दिव्यचंदन विश्वरंजन स्वराज कॉलोनी मदन मोहन नगर पटिया भुवनेश्वर रो समस्त गुड मॉर्निंग चले चंदी सब स्टाफ मन को गुड मॉर्निंग चले चंदी सुनवे पई चाहि चंदी सरगम फिल्म 1979 रो सरगम फिल्म रो गीत डफली वाले डफली वजा लता मंगेशकर मोहम्मद रफी जी की आवाज में एंड डेडिकेट करी चंदी लीजा रानी कल्याणी रश्मि सुरेखा मामी लता नानी एंड सबो आरजे सबो श्रोता मन को तबे पहुंचुची आपणक पाख को आपणक मनपसंद रे गीत आम सहित कनेक्ट है स्वराज कॉलोनी मदन मोहन नगर पटिया भुवनेश्वर बासंती लक्ष्मी प्रिया रोजालिन दिव्यचंदन विश्वरंजन

सुन चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो नेक्स्ट व्हाट्सएप एंड आपण मानकर लव लेटर्स आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे ज्ञान रंजन साहू केन्द्रापड़ सुना पंजरी चलचित्र गीत मोर मन उड़ी जाए रे ए गीत टी शुणा चाहते पहुंचे आपण मन पसंद रुंदर गीत।

ओके सो समय सरी सरी आसुचि एंड आपण मनकर बहुत सारा रिक्वेस्टेड गीत क्या करे ट्राई करिवा समस्त गीत को प्ले करिवा पई माने मैक्सिमम गीत को प्ले करिवा पई हम सहित कनेक्ट हे छथि सुधा सडंगी रो उर्मिला बेहरा प्रशांत कुमार बेहरा लिपु लुटो दीपू सिपु पप्पू लुसी खुशी समस्त एवरीवन ओके लिखले नमस्कार स्मृति अपा केमिति अछ कार्यक्रम बहुत भल लगुचि धन्यवाद थैंक यू सो मच कार्यक्रम शुणु छथि आपण माने तबे ओडिया चलचित्र दंडा वाळुंगार टाइटल ट्रैक टिकु सुनिवा पई चाहि छथि मु दंडा वाळुंगा पहुंचुचि आपण मनक पाखकु आपण को मन पसंद रा गीत

ओके तो चलंतु नेक्स्ट एसएमएस आम सहित कनेक्ट हेचंती ओके के कनेक्ट हेचंती परे कथा आवा नहीं कहि दउची समीर संगीता पंडा तेलंगा पेंठ कटक रु आम सहित कनेक्ट हेचंती मां ओ ममता चलचित्र रो गीत किए सात किए सतर ए गीत टिको सुनिया पई चाहि चाहिचंती समीर संगीता पंडा तेलंगा पेंठ कटक रु लेखिले स्मृति मैम नमस्कार आज रो डायल इन टेक्नोलॉजी को नहीं प्रस्तुत हेथिला जेहेतु आज जातीय प्रजुक्ति विद्या दिवस प्रजुक्ति विद्या मनीष समाज पई आशीर्वाद भी अभिशाप भी लिखिचंती जिए जेमिति प्रजुक्ति रो उपयुक्त उपयोग कला तार सुफल अथवा कुफल पाइला गोटे कथा एते सुंदर आ उपादेय विषय वस्तु आणुछंती आपनको धन्यवाद मात्र किछि श्रोता टॉपिक न बुझि एडु तणु गप मारुछंती जहा द्वारा कि माने कालागरे मुला चुबय भळी होउछ आ एति प्रति ध्यान दियंतु लेखिछंती ठीक अछि नो प्रॉब्लम कारण आकाशवाणी गोटे एमिति प्लेटफॉर्म जहा द्वारा कि आमे समस्तंको किछि न किछि कथा कहि थाउ किछि इन्फॉर्मेशन देइ थाउ जहा द्वारा कि अन्य माने भी जो माने जानि नाहंती से माने भी जानि परंती एंड बहुत बहुत धन्यवाद आज आपण मध्य आपणकर मतामत रखी चंदी माँ और ममता चलचित्र किए सात किए सतर पहुंचुची आपणको पाखुको।

सुनी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 10:32 सुनी छंती आपण माने रेनबो एसएमएस सोरे आपण मानकर अनुरोध रगे 10 स्मृति पडछि आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर्स एंड प्ले करो छि आपण मन पसंद।

ओके समय सॉरी सॉरी असुची एंड आप लोगों का बहुत सारा मैसेज हमारे पास अभी भी आ रहा है, तो हमसे जुड़े हुए हैं दूर से जो कि हमको सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR आप और शायद लाइव स्ट्रीमिंग में भी सुन रहे होंगे। दत्तरंगी भाटापड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोताएं जुड़े हुए हैं, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। डुप्लीकेट फिल्म का गाना कथई आंखों वाली एक लड़की, ये गाना सुनना चाहते हैं और लिखते हैं जय जगन्नाथ प्रिया आरजे स्मृति जी, थैंक यू सो मच। तो पहुंच रहा है आपके पास ये आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना।

क्या बात है, क्या कितना सुंदर गाना है यार। मतलब ये गाना मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग लिस्ट में एक गाना है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो हमसे फिर से और भी बहुत सारे श्रोताएं जुड़े हुए हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हमसे जुड़े हुए हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से। तो सुनना चाहते हैं अनाड़ी फिल्म का गाना किसी के मुस्कुराहट, बहुत पुराना गाना है ये, तो मुकेश जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। लिख रहे हैं रेनबो SMS दिल से दिल तक, जय जगन्नाथ जी, आप कैसे हैं जी? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आई होप आप सब लोग भी बहुत मस्त होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सबको दिए हैं और सबको वेरी नाइस प्रोग्राम विथ लवली सॉन्ग लिखे हैं, थैंक यू सो मच। तो पहुंच रहा है अनाड़ी फिल्म का ये सुंदर सा गाना आपके पास।

तो एक लास्ट मैसेज अभी का रेनबो एसएमएस का लास्ट एसएमएस लेंगे। जय जगन्नाथ जी, गुड मॉर्निंग दीदी, फिल्म मैंने प्यार किया का गाना सुनना चाहते हैं, आजा शाम होने आई ये गाना। ओके, तो कौन है? अनिल कविता गौरव मानसी। ओके, अनिल कविता गौरव मानसी अरोरा, हनुमान मंदिर रोड मोती नगर से हमसे जुड़े हुए हैं एंड लिख रहे हैं कि लाइव एंजॉय कर रहे हैं एक घंटा आपके साथ ये वाला लाइव शो, एंड थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सभी प्यारे श्रोता एंड सब जो आप में सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर आप में सुन रहे हैं, सो सबको दिल से प्यार भेजते हैं ये लोग। तो चलिए पहुंचाते हैं आपको आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना, मैंने प्यार किया मूवी का, आजा शाम होने आई।

अभी स्मृति को भी दीजिए विदाय आपणक सहित नेक्स्ट आर्जे आउ कि समय पर आसी जोड़ी हेजे एमती शुणु था आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक।

0: किया
1: ये!
0: मगर बंदर ने हमारे लिए क्या किया?
1: क्या किया? बाप ने हमें घर से निकाला
0: निकाला
1: बंद किया किस्मत का ताला।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंकु पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो

0: पाइबा पाई 14 वर्षर झियामानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।
1: कथारे कथारे अनेक कथा आउ गपरे गपरे आईमा पीढ़ी स्वाशरीर गप गीतरे गीतरे आम हृदय आपण हृदय को छुई जाऊ संगीतार स्वर से स्वर से आपण मन भरीज अनेक आशा अनेक विश्वास आपसरी जीव सब दुख अवसाद भूली जावा मनर सब जंत्रणा हृदय व्यथा आ मजी जावा संगीतर मीठा बास्नारे शुणा किसी कथा किसी गीत। आज संगीतमय परिवेश रे आपनका सहित मु अछि आपनकर साथी बंधु जयदे मु रहिबे आपनकर हृदय रे आपनकर हजेबे मजेबे आ भिजेबे गीतर वर्षा रे सटी ट्यून करथनो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

शुणुना 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकर दिल से दिल तक चली छे कार्यक्रम किछ कथा किछ गीत हमें कथा होचे से रस रसाळ फळ आंब संपर्क रे वेदरे देवता मानंकर भोज्य तालिका रे आंब स्थान पाइची अनेक धर्म रे प्रचलित लोकगीत और लोककथा रे आंब अंगांगी भावे जड़ित होई रहिची हिंदू माने आंब गछ को सृष्टिर देवता प्रजापति रूपे ग्रहण करिथंती स्कंद पुराण रे उल्लेख अछि जे अमृत संधान रे देवता और असुरगण समुद्र मंथन कला बेले समुद्र गर्भरु जेउ किछि वृक्ष उत्पन्न होइतला सेगुडक मध्ये आंब और अन्य वृक्ष थिला पारिजात और बट मत्स्य पुराण वर्णना मध्य विभिन्न प्रकार व्रत पालन आंब गछर नाम उल्लेख होइछि कहा जाय जे रावण लंकापुर रे आंब गछ को हनुमान भारत आनिथिले हेतबो एता म शास्त्र वर्णन वर्णना है तो बंधु आपण कोन जान जे आंब संपर्क रे भावु थांदु मु फेरु छै गीतरी परे आउ किछि आंबर कथा आपण को पाई नै

0: नमस्कार सुनीता, केमिती अछ? आउ आजी एठी केमिती?
1: नमस्कार दीदी, आजी मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारी पई उपहार नबा को आसीतिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: आंब चोपा तथा रसरे बहु औषधीय गुणयुक्त उपादान रहिछि। आंब चोपारे थिबा पॉलीफेनोल रो कैंसर आउ पेरास्टेट ग्लांड वृद्धि प्रेस्टेट ग्लांड वृद्धि भली व्याधि पई औषध प्रस्तुत करा जाय। आंब रसर

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मु झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरि एक कैंसर जहा को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
4: 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। एवं समय जाए सुनवा कतरी ओडिया कथचित्र गीत।

0: अरे कविता, भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।